0: को इंटरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9028-13424 र 9850-14175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
1: यति बेला बिहानको ठिक 9 बज्यो।

सुन सुन माया जोमिसोले भेट भागो दिन खेला नि तास तिम्रो हाम्रो रा।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी
1: हाँ।
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: आप लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए आइए।

0: Eu...
1: गाँव है रेला ऊँच चबाओ यूं पटका है ये देसी कमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो
0: नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाओ में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा